दया करो किश मेहर उपावो, डोबदे पत्थर तारे। वाहिगुरु जी, फरीदा बुरेदा भला कर।

जुगो जुग अटल, चवर शतर तखत दे मालक, हाजरा हजूर जारा जहूर, शब्द गुरु बाणी के बोहित, अमृत के दाते, दसा पातशाहियां दी जोत, शब्द गुरु धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज तिन्हां दी पावन पवित्र ते मुकद्दस हजूरी विच शामा वेले दे सज्जे दीवाना दीआं हाजरियां भर रहे बहुत ही सत्कारयोग सन्मानयोग सतसंगी जनों, सतगुरां ने बड़ी अपार बख्शिश रहमत कीती है। आप सब मेरे तो पहला गुरु करके रागी सिंघां पासों गुरदेव दी अमृतमयी बाणी दे रस पिन्ने कीर्तन सरवण कर रहे सी। तो आओ साध संगत, समा है लड़ीवार चल रही शेख फरीद साहब जी दे पावन श्लोकां दी विचार दा। तो जिन्ने शरीर आप सतगुरां दे हजूर बैठे हो जां घरां विच मीडिया दे माध्यम राही सरवण कर रहे हो, विचारां नूं रमण तों पहलां फतेह दी सांझ पाईए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। शेख फरीद साहब दे श्लोकां दा प्रकरण पिछले समय तों चल रहा है। कल भी मैं एक अर्ज कीती सी भी जदों भी आपां गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी नूं साध संगत जी पढ़दे आ ना, ते गुरदेव दी बाणी नूं समझण दे वक्खो वक्खरे पैटर्न ने, तरीके ने। कई वार गल किसे प्रसंग विच चलदी है, तुसीं जदों निरंतर बाणी दे शब्द पढ़ी जाओगे, पहला शब्द पढ़िया, दूजा पढ़िया, तीजा पढ़िया, चौथे शब्द विच जाके हो सकदा है कि वह सारी गल स्पष्ट हो जाए। दूजा बाणी विच कई बार इदा भी आउंदा है कि एक थां उत्ते महाराज सवाल करते ने, जिवें श्री राग विच एक शब्द है,

Satan, mais grosso è ti. Satan, mais grosso è ti. ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना ना निर्मल करनी साध संगत कै अंचल लावो भिखम नदी जाय तरणी। तू मेरो मेर पर्वत स्वामी ओट गही मैं तेरी। ना तुम डोलो ना हम गिरते रख लीनी हर मेरी। अब तब जब कब तुही तुही हम तो प्रसाद सुखी साध ही। तेरे भरोसे प्यारे

कर कृपाए अपनो नाम दीजै, नानक सद बलिहारै। राग गौड़ी चेती महला पंजवा, एको अंकार सत गुर प्रसाद। सुख नाही रे हर भगत बिना, चीत जन्म ए रतन अमोलक, साध संगत जप एक खिना रहाउ। सुत संपत बनता बिनोद, छोड़ गए वो लोग भोग। हैवर गैवर राज रंग, त्याग चल्यो है मूढ़ नंग। चोआ चंदन दे फूलिया, सो तन धर संग रूलिया। मोह मोहिया जान दूर है, को नानक सदा दूर है। गौड़ी महला पंजवा। मन धार तरबे हर नाम नो रहाओ, सागर लहर संसार संसार। गुरबोहित पार ग्राम नो रहाओ। काल कालख अंधियारिया, गुर ज्ञान दीपक उजियारिया। बिख बिखिया पसरी यत करी, उबरे जप जप हर गुनी। मतवारों माया सोया, गुर भेटत परम पौ खोया। कहो नानक वेख त्याया, घट घट नदरी आया। गौड़ी महला पंजवा। दीवान हमारो तुही एक, सेवा थारी गुरे टेक। रहाओ अनक जुगत नहीं पाया, गोर चाकर ले लाया। मारे पंच बिखा दिया, गुर कृपा ते दल साधिया। बख्शीश वजह मिल एक नाम, सुख सहज आनंद विश्राम। प्रभ के चाकर से पहले, नानक तीन मुख उजले। गौड़ी महला पंजवा। जियरे ओला नाम का, अवर जिकरन कर आवरणो। तिन में पो है जाम का रहा। अवर जतन नहीं पाई है, वड्डे भाग हर त्याई है। लाख कमती जानी है, आगे तिल नहीं मानी है। आहं बुद्ध कर्म कमावने, ग्रेबालू नीर बहावने। प्रभ कृपाल कृपा करे, नाम नानक साधु संग मिले। गौड़ी महला पंजवा।

सब को प्राण अधरिया रहाओ। करण करावण तुही एक, जी जंत की तुही टेक। राज जोबन प्रभ तू तने, तो निर्गुण तू सरगुणी। इहां यूहां तुम रखे, गुर कृपा ते को लखे। अंतर जामे प्रभ सुजान, नानक तकिया तुही तान। गौड़ी महला पंजवां। हर हर हर आराधिय, संत संग हर मन वसै। परम मोह पौ साधिय रहाउ। वेद पुराण सिमृत पने, सब ऊच विराजत जान सुने। सगल स्थान पै पीत चीन, राम सेवक पै रहत कीन। लख चौरासी जवन फिरें, गोबिंद लोक ने जन्म मरें। बल बुद्ध सियानप होमे रही, हर साध शरण नानक गही। गौड़ी महला पंजवां। मन राम नाम गुण गाइये, नीत नीत हर सेविये। साध साध सर ध्याइये रहउ। संत संग हर मन वसै, दुख दर्द अनेरा भ्रम नसै। संत प्रसाद हर जापिए, सोजन दुख न व्यापिए। जा को गुर हर मंत्र दे, सोभरिया माया गणते। नानक को प्रमया कर, मेरे मंत्र वसै नाम हर। गौड़ी महला पंजवां। रसना जपिय एक नाम, इहां सुख आनंद कनाम। आगे जी के संग काम रहाउ। कटिय तेरा अहंग रोग, तुम गुर प्रसाद कर राज जोग। हर रस जिन जन चखिया, ताकि तृष्णा लथिया। हर विश्राम निद पाया, सुबोर नकत ही ताया। हर हर नाम जाको गुर दिया, नानक ताका पो गया। गौड़ी महला पंजवां। जाको बिसरे राम नाम, ताहू को पीर। साध संगत मिल हर रवें।

वाहू सोरे हितनो हारजू आरजू अभिदे इंद्री वसल जितनो हरन पारन संपूर्णा चरण कमल रंग रितनो नानक उदरे साध संग कृपा निध मैं दितनो गौड़ी महला पंजवा मोह दासरो ठाकुर को तान प्रभ का खाना रहाओ वैसो है रे खसम हमारा खन में सास सवार नहारा काम करे जे ठाकुर पावा गीत चरित प्रभ के गुण गावा शरण परयो ठाकुर वजीरा तिना देख मेरा मन तीरा एक टेक एक आधारा जन नानक हर की लागा कारा गौड़ी महला पंजवा है को ऐसा हो मैं तो रे है कोई ऐसा हो मैं तो रे इस मिट्टी ते ए मन हो रहा हो अज्ञानी मनुख पया जो नाही सोलो रह रैन अंधारी कारिया कवन जुगत जित पोर भ्रम तो हारिया अनक बिधि कर टोर कौ नानक कृपा पई साध संगत निद मोर गौड़ी महला पंजवा चिंता मन करुणामय रहाओ दीन दयाला पार ब्रह्म जाके सिमरन सुख पै अकाल पुरखिया गाद बोध सुनत जसो कोट अग खै कृपा निद प्रमया थार नानक हर हर नाम ले गौड़ी पूर्वी महला पंजवा मेरे मन शरण प्रभु सुख पाए जातन बिसरे प्राण सुख दाता सोदन जाते जाए रहाओ एक रैन के पाहुंत में आए बहु जुग आस बंधाए गृह मंदिर संपे जो दिस ज्यो तरवर की शाये तन मेरा संपै सम मेरी बाग मिलक सब जाए देवन हारा बिसरियो ठाकुर खिन मैं होत पराए

अनेक बंधन माया परमत पर माया गुण नित नहीं गाया मन बिखे ही मैं लुजी है। जा कोरे कृपा करे जीवत सोई मरे साध संग माया तरे नानक सो जन दर हर्ष जी है। गौड़ी महला पंजवा सबहूं को रस हर हो रहाओ काहू जोग काहू भोग काहू ज्ञान काहू ध्यान काहू हो डंड तर हो काहू जाप काहू ताप काहू पूजा होम नेम काहू हो गौन कर हो काहू तीर काहू नीर काहू वेद विचार नानका भगत प्रे हो। गौड़ी महला पंजवा।

ओट प्रभ तोरी। तू ही मान, तू ही तान, तू ही पत, तू ही प्राण, गोर तूटी ले जोरी, तू ही ग्रे, तू ही बन, तू ही गाओ, तू ही सुन, है नानक नेर नेरी गौड़ी महला पंजवा। मातो हर रंग मातो रहाओ, ओही पियो ओही खियो, गुरे दियो दान कियो, आहु स्यो मन रातो। ओही पाठी ओही पोचा, ओही प्यारो ओही रुचा, मन ओहो सुख जातो, सहज खेल आनंद खेल, रहे फेर पे मेल, नानक गुर शब्द परातो। राग गौड़ी मालवा महला पंजवा, एको अंकार सत गुर प्रसाद। हर नाम ले हो मीता ले हो, आगे बिकम पंत पयान रहो। सेवत सेवत सदा सेव, तेरे संग बस्त है काल, कर सेवा तू साध की हो काटिए जमजाल। होम जग तीर्थ किए, बिच होमे बदे बिकार, नरक सुर्ग दे पुंचना होए बौर बौर अवतार। शिवपुरी ब्रह्म इंद्रपुरी, निचल को थाओ ना है, बिन हर सेवा सुख नहीं, हो सकते आवे जाए। जैसो गुर उपदेशया, मैं तैसो कया पुकार, नानक कहे सुन रे मना, कर कीर्तन होए उधार। राग गौड़ी महला महला पंजवा, एको ओंकार सतगुर प्रसाद। पायो बाल बुद्ध सुख रे रहाओ, हरख सोग हान मृत दुख सुख, चित संसर गुर मिले रहाओ। जौ लो हाँ किश सोचो चितवा, तौलो दुखन परे, जो कृपाल गुर पूरा पेटिया, तो आनंद सहजे। जेति सियानप कर्म हो किए, तेते बंद परे, जो साधु कर मस्तक धरियो, तब हम मुक्त पे। जौलो मेरो मेरो करतो, तौलो बिख केरे, मान तन बोधे अर्पी ठाकुर को, तब हम सहज सोए। जौलो पोट उठाई चलियो, तौलो डान परे, पोट डार गुरपूरा मिलिया, तो नानक निरपय। गौड़ी माला महला पंजवा। पावन त्यागियो रि त्यागियो, त्यागियो मैं गुरमल त्यागियो, सर्व सुख आनंद मंगल रस, मान गोबिंद आग्यो रहाओ। मान विमान दो समाने, मस्तक डार गुर पागियो, संपत हर खन आपत दुखा, रंग ठाकुर लागियो। बास बासरी एक स्वामी, ओदे आन दृष्टा गयो, निरपो पै संत परम डारियो, पूर्ण सरबा गयो। जो किश करते कारण कीनो, मन बुरो ना लागियो, साध संगत प्रसाद संतन कै, सोयो मन जागियो। जन नानक ओड तुहारी परे हो, आयो शरणा गयो, नाम रंग सहज रस माने, फिर दुख ना लगियो। गौड़ी माला महला पंजवा। पाया लाल रतन मन पाया, तन शीतल मन शीतल थिया, सतगुर शब्द समाया रहाओ। लाथी भूख त्रिशन सब लाथी, चिंता सकल विसारी, कर मस्त गुर पूरे धरियो, मन जीतो जग सारी। त्रिपते अघाए रहे रे दे अंतर, डोलन ते अब चूके, अखोट खजाना सत गुर दिया, तोट नहीं रे मुके।
ਅਚਰਜ ਏਕ ਸੁਨੋ ਰੇ ਭਾਈ, ਗੁਰ ਐਸੀ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ, ਲਾਹ ਪਰਦਾ ਠਾਕੁਰ ਜੋ ਭੇਟਿਓ, ਤੋ ਬਿਸਰੀ ਤਾਤ ਪਰਾਈ। ਕਹਿਓ ਨਾ ਜਾਈ ਇਹ ਅਚੰਪਉ, ਸੋ ਜਾਣੈ ਜਿਨ ਚਾਖਿਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਪਏ ਬਿਗਾਸਾ, ਗੁਰ ਨਿਧਾਨ ਹਿਰਦੈ ਲੈ ਰੱਖਿਆ। ਗੌੜੀ ਮਾਲਾ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਉਬਰਤ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੀ ਸ਼ਰਣੀ, ਸਰਬ ਲੋਕ ਮਾਇਆ ਕੇ ਮੰਡਲ, ਗਿਰ ਗਿਰ ਪਰਤੇ ਤਰਣੀ ਰਹਾਉ। ਸ਼ਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਬੇਦ ਵਿਚਾਰੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਹਿਆ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਸੁਖ ਨਗਨ ਹੂੰ ਲਹਿਆ। ਤੀਨ ਭਵਨ ਕੀ ਲਖਮੀ ਜੋਰੀ, ਬੂਝਤ ਨਾਹੀ ਲਹਿਰੇ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਗਤ ਕਹਾ ਥਿਤ ਪਾਵੇ, ਫਿਰ ਤੋ ਪਹਿਰੇ ਪਹਿਰੇ। ਅਨਕ ਬਿਲਾਸ ਕਰਤ ਮਨ ਮੋਹਨ, ਪੂਰਨ ਹੋਤ ਨ ਕਾਮਾ, ਜਲਤੋ ਕਬੂ ਨ ਬੂਝਤ, ਸਗਲ ਬਿਰਥੇ ਬਿਰਨਾਮਾ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਰ ਸੁਖ ਪੂਰਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਿਵਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੀ ਤੂਰਾ। ਗੌੜੀ ਮਾਲਾ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ।

आन जानत किश ने कमानो जप तप कछु ना साधा दाह दिश लै ए मन दोरायो कवन कर्म कर बाधा। मन तन धन भूमखा ठाकुर हो सकाए मेरा परम मोह का सुजस नाही ए पैंकर पै पैरा। तब एह कहां कमावन परया जब एह कछु ना होता जब एक निरंजन निरंकार प्रभ सब किस अपे करता। अपने कर्तव आपे जाने जिन एह रचन रचाया कहो नानक करण हार है आपे सतगुर परम चुकाया। गौड़ी माला महला पंजवा हर बिन अवर क्रिया ब्रथे जप तप संजम कर्म कमाणे ए ओरे मूसे रहाओ। भरत नेम संजम में रहता तिन का आठ न पाया आगे चलने और रह पाई वहां काम न आया। तीर्थ नाए अर तरणी प्रमता आगे ठौर न पावे वहां काम न आवे ए बिद ओ लोग नहीं पति आवे। चतुर वेद मुख बचनी उचर आगे महल न पाइये बुझे नाही एक सुधाकर ओ सगली चाक चखाइये। नानक कह तो ए बिचारा जे कमावे सो पार करामी गुरसेवो अर नाम ते आवो त्यागो मनो गुमानी। गौड़ी माला पंजवा माधव हर हर हर मुख कहिए हम ते कछु ना होवे स्वामी ज्यो राखो त्यों रहिए रहाओ। क्या किश करे के करने हारा क्या इस हाथ बिचारे जित तुम लावो तित ही लागा पूर्ण खसम हमारे।

राग गौड़ी माझ महला पंजवा एको ओंकार सतगुर प्रसाद दीन दयाल दमोदर राया जियो कोड़ जना कर सेव लगाया जियो भगत विशल तेरा बिरद रखाया जियो पूर्ण सबने जाई जियो क्यों पेखा प्रीतम कवन सुकरणी जियो संतां दासी सेवा चरणी जियो एह जियो वताई बल बल जाई जियो तिस निम निम

हरनर प्रणाम ते आई जियो। पै कृपाल स्वामी मेरे जियो, पतित पवित लग गुर के पैरे जियो, परम पौ काट किए निरवैरे जियो, गुरमन की आस पूराई जियो। जिन नाओ पाया सुतनवंता जियो, जिन प्रभ त्याया सुशोभावंता जियो, जे साधु संगत ते सब सुकरणी जियो, जिन नानक सह समाई जियो। गौड़ी महला पंजवा माज, आओ हमारे राम प्यारे जियो, रैण दिन सास सास चितारे जियो। संत दियो संदेशा पै चरणारे जियो, तुद बिन कित बित ये जियो। संग तुम्हारे मैं करे आनंदा जियो, वाण तिण तिरभवन सुख परमानंदा जियो, सेज सुहावी ए मन बिकसंदा जियो। पेख दर्शन ए सुख लही है जियो, चरण पखार करी गुर सेवा जी, चरण पखार करी नित सेवा जियो, पूजा अर्चा बंदन देवा जियो। दासन दास नाम जप ले मां जियो, बिनो ठाकुर पे कहिए जियो, इच पुन्नी मेरी मन तन हरिया जियो, दर्शन पे कत सब दुख पर हरिया जियो। हर हर नाम जपे जप तरिया जियो, ए अजर नानक सुख सही है जियो। गौड़ी माज महला पंजवा सुन सुन साजन मन मित प्यारे जियो, मन तन तेरा ए जियो, पे वारे जियो, विसरना ही प्र प्राण आधारे जियो, उसता तेरी शरणाई जियो। जिस मिले मन जीवे पाई जियो, गुर प्रसादी सो हर हर पाई जियो, सब किश प्रभ का प्रभ किया जाई जियो, प्रभ को सद बल जाई जियो, ए निधान जपै वड भागी जियो, नाम निरंजन एक लिव लागी जियो। गुर पूरा पाया सब दुख मिटाया जियो, आठ पैर गुण गाया जियो, रतन पदार्थ हर नाम तुम्हारा जियो, तू सच्चा शाह भगत बन जारा जियो। हार तन रास सच वापारा जियो, जन नानक सद बलिहारा जियो। राग गौड़ी माज महला पंजवा, एको ओंकार सतगुर प्रसाद। तू मेरा बहुमान करते तू मेरा बहुमान, जोर तुम्हारे सुख वसा सच शब्द निशान रहो। सबे गल्ला जातियां सुन के चुप किया, कद ही सुरत ना लदिया माया मोहड़िया। दे बुझारत सारता से अखें डिठड़िया, कोई जे मूर्ख लोभिया मोल ना सुनी कहिया। एकस दो चौंका गणे सब एकत साध मुठी, ये कैद ना रसीड़ा का विरला जाए का विरली जाए उठी। भगत सच्चे दर सोहंदे आनंद करे दिन रात, रंग रते परमेश्वर जन नानक तिन बल जात। गौड़ी महला पंजवा मांझ, दुख पंजन तेरा नाम जी, दुख पंजन तेरा नाम, आठ पहरे आराधिया पूर्ण सतगुर ज्ञान रहाओ। जित कट वसै पार ब्रह्म, सोई सुहावा थाओ, जम कंकर नेड़ न आवई रसना हर गुण गाओ। सेवा सुरत ना जानिया ना जापे आराध, ओट तेरी जग जीवना मेरे ठाकुर अगामे अगाध।
ਭਏ ਕਿਰਪਾਲ ਗੁਸਾਈਆਂ ਨੱਠੇ ਸੁਖ ਸੰਤਾਪ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਾ ਲੱਗਈ ਸਤਿਗੁਰ ਰੱਖੇ ਆਪ ਗੁਰ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇਈ ਗੁਰ ਗੁਰ ਸੱਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਸਭ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਬਲਿਹਾਰ ਗਉੜੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮਾ ਜਪ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਕਾਮਾ ਰਹਾਉ ਰਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਜਪਿੰਦਿਆਂ ਹੋਆ ਮੁਖ ਪਵਿੱਤਰ ਹਰ ਜਾ ਸੁਣੀਐ ਜਿਸ ਤੇ ਸੋਈ ਭਾਈ ਮਿੱਤਰ ਸਭ ਪਦਾਰਥ ਸਫਲਾ ਸਰਬ ਗੁਣਾ ਜਿਸ ਮਾਹਿ ਕਿਉਂ ਗੋਬਿੰਦ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ ਜਿਸ ਮ੍ਰਿਤ ਦੁਖ ਜਾਹਿ ਜਿਸ ਲੜ ਲੱਗੇ ਐ ਜੀਵੀਐ ਭਵ ਜਲ ਪਾਈਏ ਪਾਰ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਉਧਾਰ ਹੋਏ ਮੁਖੀ ਉਜਲ ਦਰਬਾਰ ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਗੋਪਾਲ ਜਸ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਰਾਸ ਨਾਨਕ ਉਬਰੇ ਨਾਮ ਜਪ ਦਰ ਸੱਚੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਗਉੜੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮੀਠੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਜਿੰਦੂ ਤੂੰ ਮੀਠੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਸੱਚੇ ਸੇ ਤੀਰਤਿਆਂ ਮਿੜਿਆ ਨਿਥਾਵੇਂ ਥਾਉ ਰਹਾਉ ਹੋਰ ਸਾਧ ਸਫਕਿਆਂ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਵਿਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਕਰੇ ਫਿੱਟ ਸੋ ਜੀਵਨ ਸੋਏ ਅੰਚਲ ਗਏ ਕੈ ਸਾਧਕਾ ਤਰਣਾ ਏ ਸੰਸਾਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਰਾਧੀਏ ਉਦਰੇ ਸਭ ਪਰਵਾਰ ਸਾਜਨ ਬੰਧ ਸੁਮਿੱਤਰ ਸੋ ਹਰਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਦੇ ਔਗਣ ਸਭ ਮਿਟਾਏ ਕੈ ਭਰਿ ਉਪਕਾਰ ਕਰੇ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੇ ਘਰ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਜਾਚਕ ਦਾ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਤਦਨੋ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਗ ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ਨੌਵਾਂ

बोध संगत दुर्जन की ताते अनस भागो रहाओ। सुख दुख दोनों समकर जाने और मान अपमाना हरक सोग तेरे अतीता तिन जग तत् पछाना। औसत निंदा दो त्या गए खोजे पद निर्बाना जन नानक के खेल कठन है किन्हों गुरमुख जाना। गौड़ी महला नवा साधो रचना राम बनाई एक बिन से एक अस्थिर मन अचरज लखियो ना जाई राव। काम क्रोध मोह बस प्राणी हर मूर्त बिसराई झूठा तन साचा करमा नेओ जो सुपना रह नाई। जो दिसे सो सकल विनाशे ज्यो बादर की शाई जन नानक जग जान्यो मिथ्या रयो राम शरणाई। गौड़ी महला नावा प्राणी को हर जस मन नहीं आवे एहन समगन रहे माया में को कैसे गुण गावे रहाओ। भूत मीत माया ममता स्यों ए विद्या बंधावे मृग तृष्णा ज्यों झूठो ए जग देखता से उठता वे। भुगत मुगत का कारण स्वामी मूढ़ताए बिसरावे जन नानक कोटन में को भजन राम को पावे। गौड़ी महला नावा साधो ए मन गयो ना जाई चंचल तृष्णा संग बस्त है याते थिर ना रहाई रहाओ। कठन क्रोध काट ही के भीतर जे सुध सब बिसराई रतन ज्ञान सबको हिरली ना तास्यों कछ ना बसाई। जोगी जतन करत सब हारे गुनी रहे गुन गाए जन नानक कर पै दयाला तो सब बेद बने आई। गौड़ी महला नावा साधु गोविंद के गुन गावो मानस जन्म मुलक पायो वृथा काय गवाओ रहाओ। पतित पुनीत दीन बांध हर शरण ताए तुम्हें आवो गज को त्रास मिट्यो जे समृत तुम काहे बिसराव। ताज विमान मोह माया फोन भजन राम चित लावो नानक एन मुगत पंथे गुरमुख तुम पावो। गौड़ी महला नावा को माए पुल्यो मन समझावे वेद पुराण साध मग सुन कर निमुख न हर गुण गावे रहाओ। दुर्लभ दे पाए मनस की वृथा जन्म सिरावे माया मोह महासंकट बन तासो रुचि उपजावे। अंतर बाहर सदा संग प्रभ तासु ने न लावे नानक कहत नानक मुकताए तुम मानो जे कट राम समावे। गौड़ी महला नावा साधो राम शरण बिश्रमा वेद पुराण पढ़े को ए गुण सिमरे हर को नामा रहाओ। लोभ मोह माया ममता फुन अभिखेन की सेवा हरक सोग पर सहजे नाहन सो मूर्त है देवा। सुरग नरक अमृत बिखे सब त्यों कंचन अर पैसा औसत निंदा ए समझा के लोभ मोह फुन तैसा। दुख सुख ए बांदे जे नाहन ते तुम जानो ज्ञानी नानक मुकत ताए तुम मानो ए बिद को जो प्राणी। गौड़ी महला नावा मान रे कहा पयो तै बोरा एहन सियोद कटे नहीं जाने पयो लोभ संग होरा रहाओ। जो तन तै अपनो कर मान्यो अर सुंदर ग्रे नारी
इन मैं कछ तेरो रे नाहन। देखो सोच बिचारी, रतन जन्म अपनो तें हारियो, गोबिंद गत नहीं जानी। निमख न लीन पयो चरणन स्यों, बृथा दुसरानी। कहो नानक सोई नर सुखिया, राम नाम गुन गावे। और सकल जग माया, मोहया निरपय पद नहीं पावे। गौड़ी महला नावा, नर अचेत पाप ते डर रे। दीन दयाल सगल पे पंजन, शरण ताए तुम पर रे रहाओ। वेद पुराण जास गुन गावत, ताको नाम ही मोतार रे। पावन नाम जगत में हर को, सिमर सिमर कसमर सबहार रे। मानस दे बहुर ने पावे, कशु पा मुक्त का कार रे। नानक कहत गाय करुणा में, पाव सागर कह पार उतर रे। वेद पुराण जस गुण गावत, ताको नाम ही मोतार रे। पावन नाम जगत में हर को, सिमर सिमर कसमल सब हर रे। मानस दे बहुर न पावे, कशु पाव मुक्त का कार रे। नानक कहत गाय करुणा में, पाव सागर कह पार उतर रे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु की पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु प्यारे, गुरु सवारे, अति सत्कार योग सत्संगी जी नूं वड़ पा गए हां। जिथे आप जी ने लड़ीवार चल रहे श्री सहज पाठ दे राही पावन बाणी दा आनंद माणिया है। समा है शब्द चौंकी जासा की वार दे कीर्तन दा। सेवा निभाउण गए भाई हरजिंदर सिंह जी बीड़ साहिब वाले। आओ तिन्हां दे जत्थे पासों पावन बाणी दे शब्द कीर्तन सरवण करिए। भुला चुका देखिमा आप संगतां दा धन्नवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

सतगुरु मेरे सच पाए जिन कै हृदय सच वसाया मूरख सचन जाननी मन मुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया विच दुनिया।

जुगत न जाने छड़ बह करबार सब को पूरा पे होवे घट न कोई आख है पत प्रवाणा पिछे पाइए तानान तुले जापे महला पहला वधी सो वजगनान का।

द्वापर धर्म दुए पैर रखाए, गोरमुख होवे ता नाम दृढ़ाए। काल जोग धर्म कला एक रहाए,

सब जुग मह नाम उत्तम होई, गुरमुख विरला बूझै कोई, हर नाम त्याए भगत जान सोई, नानक जोग जोग नाम वडियाई होई। सब जोग में नाम उत्तम होई,

अंदले दैसिर मूंड कटाया रावण मार क्या वड्डा पया क्या उपमा तेरी आखी जा

बाजारी बाजार में आए कड़े बाजार गावे राजे राणिया बोले आल पताल बड़िया ऐसिया राजिया राणिया दिया कहानिया नू वड़ा करके दसिया जांदा गावे राजे राणिया बोले आल पताल लख टकिया के मुंदड़े लख टकिया के हार जित तन पाइया नानका से तन होवै शार। गुरुदेव ने कहा ज्ञान ना गलनी ढूंढिया वो जिहड़ा अकाल पुरख वाहिगुरु का ज्ञान है वह गल्लां बातां नाल ढूंढिया लभ्या नहीं जा सकता वो एडा बेअंत ते वड्डा है। ज्ञान ना गलनी ढूंढिया कथना कथना का अर्थ हुंदा है उहदा वख्यान करना उहनू मुकम्मल रूप विच कहना। आख्या ज्ञान ना गलनी ढूंढिया कथना करड़ा करड़ा का अर्थ हुंदा सख्त सार का अर्थ भी सख्त है जिवें आपां कहिंदे आ कोई चीज बड़ी ठोस होवे। महाराज ने कहा वो अकाल पुरख एडा बेअंत एडा वड्डा एडा विशाल उहदा ज्ञान बयानिया नहीं जा सकता उहदे बारे कहना कथना करड़ा है औखा है। तो देवी देवत्यां दीयां कहानियां कईयां जा सकदियां ने राम ते कृष्ण बारे बहुत कुछ बोलिया जा सकता है पर निरंकार दे बारे मुकम्मल रूप विच बोलिया कुछ भी नहीं जा सकता। सतगुरु की बाणी विच आपां बचन पढ़ते हैं महाराज कहिंदे ने उपमा जात ना कही मेरे प्रभ की मेरा वो प्रभु मेरा वो अकाल पुरख जिहड़ा सर्वश्रेष्ठ है उहदी उपमा उहदी वड्याई नूं क्या नहीं जा सकता। उपमा जात ना कही मेरे प्रभ की उपमा जात ना कही बाबा जी कहिंदे तज आन शरण गही भाई मैं ते सारे आसरे छड़ के उहदी शरण विच जाके पै गया जिहदी वड्याई वड्डी है जिहदी सिफतो सलाह वड्डी है। पावन बाणी सोदर विच उस निरंकार अकाल पुरख की हस्ती बारे पढ़दे हां असीं नितनेम करदे हां ये बोल पढ़दे हां सुण वड्डा आखै सब कोए केवड वड्डा डेठा होए कीमत पाए ना कहिया जाए उहदी कीमत पाई नहीं जा सकदी उहदे बारे कहिया नहीं जा सकदा कीमत पाए ना कहिया जाए कहने वाले तेरे रहे समाए वड्डे मेरे साहिबा हे साहिब मालक तू बहुत वड्डा है वड्डे मेरे साहिबा। तो सतगुरु महाराज ने आख्या गैर गंभीरा गुणी गहीरा कोए ना जाने तेरा केता केवड़ चीरा चीरा दा अर्थ हुंदा जी किनारा। महाराज ने आख्या हे अकाल पुरख कोई नहीं जान सकदा तेरे किनारे नूं तेरी हद नूं तेरी हस्ती नूं। जपजी साहिब विच असीं बोल पढ़िया एक दूं जीभों लख होए लख होवें लख वीस एक तो जे मेरिया लखां जुबाना हो जान एक दू जीबों लख होए लख होवें लख वीस उन्हां लखां जुबाना दे नाल वी लख जुबान दे नाल लख लख गेड़ा आखियां एक नाम जगदीश ते जे वी लख वरा मैं तेरे नाम नू लवां एक गेड़े विच ते एक खेड ऐसी होवेगी लख लख गेड़ा आखी है एक नाम जगदीश ते मैं समझा ए तरा पत पवड़िया इस राह द्वारा इस तरीके नाल मैं पत पा लवांगा उन्हां पौड़िया नू चढ़ के तेरे दरबार विच पहुंच जावांगा ए तरा पत पवड़िया चढ़िया होए अकीस मैं ये समझा भी मैं तेरे नाल एकमेक हो जावांगा ते खेड़ ऐसी है। गुरुदेव महाराज कह लगे सुन गल्लां आकाश की कीटां आई
रीस जिमें आकाश वाल वेख के कीड़े कोई रीस करना चाहन, तू एडा बेअंत है, तू एडा विशाल है। तो धन गुरु नानक साहब महाराज ने अज जिहड़ी बख्शिश कीती बोलिया, क्या उपमा तेरी आखी जाए, हे वाहिगुरु तेरी वड्याई तेरी उपमा तेरी महिमा बयान करन तो बारी है, तू एडा बेअंत है, तू एडा वड्डा है। क्या उपमा तेरी आखी जाए, तू सर्बे पूर रहिया, आख्या हे अकाल पुरख तू सर्ब विच परिपूर्ण है, तू सर्बे पूर रहिया। लिव लाए, लिव लाए दा अर्थ है व्यापक हो के, व्यापक हो के तू सारिया दे विच वसिया होया। पावन बाणी विचों कबीर साहब का एक आपां बचन पढ़ते हैं, अक्सर ही इस बोल नू इस बचन नू मुख वाक दे रूप विच तुसी सरवण कीता होवेगा। महाराज उत्थे बख्शिश करदे ने, सनक सनंद महेश समाना, सनक ते सनंद ब्रह्मा दे पुत्र, सनक सनंद महेश, महेश दा अर्थ है शिव, सनक सनंद ब्रह्मा दे दोवें पुत्र महेश शिव जिन्हों देवता मनिया गया। बाबा जी ने कहा सनक सनंद महेश समाना, सनक ते सनंदन ने शिव वर्गियां ने, समाना दा अर्थ है शिव ते ब्रह्मे वर्गे जिन्ने भी ने, सनक सनंद महेश समाना शेख नाग, शेख नाग जिन्हों विष्णु दा शेष नाग कहा जाता, आख्या शेष नाग इत्थे महाराज कहते शेख नाग तेरो मर्म ना जाना। परमेश्वर हे अकाल पुरख तू एडा वड्डा, ब्रह्मा दे दोवें पुत्र सनक ते सनंद ते शिव वर्गे कई देवते भी जिहड़े उहदे समान होण, उहदे तुल होण, शेख नाग वर्गे वड्डे सप, शेख नाग तेरो मर्म ना जाना, तेरे मर्म नूं तेरे भेद नूं जाण नहीं सकदे। तो महाराज ने बख्शिश कीती, आख्या मेरा काम सिर्फ यह है मैं सत संगत विच बैठ के तेरे गुणा नूं अपने अंदर वसाउणा हां। संत संगत राम हृदय बसाई, संत संगत विच बह के उस रमे हुए अकाल पुरख वाहिगुरु दे गुणा नूं हिरदे विच वसाउणा मेरा काम है, तेरा अंत नहीं पा सकता मैं। संत संगत राम हृदय बसाई, फिर बाबा जी ने कहा हनुमान सर गरुड़ समाना, हनुमान वर्गे, हनुमान सर दा अर्थ है, सर दा अर्थ है तुल, उहदे वर्गे हनुमान जिहदे बारे कहा जांदा है उन्हें एक पर्वत नूं अपने हाथ उत्ते उठा लिया, उंगल उत्ते उठा लिया, जिहदे बारे कहा जांदा है उन्हें रावण वर्गे दी लंका नूं जिहड़ी वड्डी सी विशाल सी उहनूं जला दित्ता, जिहड़ा एडा बलवान ते बली सी अकाल पुरख वाहिगुरु इहदे वर्गे हनुमान वर्गे होर भी होण ते तां वी उह तेरे तुल नहीं। हनुमान सर गरुड़, गरुड़ कहिंदे ने विष्णु भगवान की सवारी नूं, जिहड़ा विष्णु भगवान है आखे उहदी सवारी है, एक पंछी है जिहदा नां है जी गरुड़। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी विच वी गरुड़ शब्द आया, ते इह जिहड़ा गरुड़ शब्द है पता की है, जिवें विष्णु गरुड़ पंछी की सवारी करदा है, सिख जिहड़ा है वह गुरु के शब्द रूपी गरुड़ की सवारी करदा, यह फर्क है। विष्णु का पंछी है गरुड़, जिहड़ा सारे पंछियों का राजा मनिया जाता, ते महाराज ने आख्या जिहड़ा सिख है ना इहदे मूंह विच गुरु अपना गरुड़ रूपी शब्द पाउंदा है। तो सतगुर ने आख्या हनुमान, हनुमान वर्गे, हनुमान सर गरुड़ समाना सुरपत, सुरपत का अर्थ है देवत्यां दा राजा इंद्र, सुरपत जिवें राजियां दा कोई राजा होवे। बाबा जी कहिंदे जिहड़े इंद्र नूं बहुत वड्डा मन्निया गया, मेरे वाहिगुरु मेरे अकाल पुरख सुरपत नरपत, भावें वह कोई देवत्यां दा राजा होवे ते भावें कोई मनुखां दा राजा होवे, सुरपत नरपत नहीं गुण जाना, हे अकाल पुरख वाहिगुरु वह भी तेरे गुणा दा अंत नहीं पा सकते, तू एडा वड्डा है, तू एडा बेअंत है। सुरपत नरपत नहीं गुण जाना, महाराज ने कहा चार वेद, चारे वेद ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद शामवेद, चार वेद अर सिमरत पुराना अते सिमरतियां ते पुराण।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 18 ਪੁਰਾਣ ਨੇ ਜੀ ਤੇ 18 ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਆਖੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੰਥ, 4 ਵੇਦ, 18 ਪੁਰਾਣ, 18 ਸਿਮਰਤੀਆਂ, 4 ਵੇਦ ਅਰ ਸਿਮਰਤ ਪੁਰਾਣਾ, ਕਮਲਾ ਪਤ ਕਵਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇ ਲਛਮੀ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਤੂੰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ। 4 ਵੇਦ ਅਰ ਸਿਮਰਤ ਪੁਰਾਣਾ, ਕਮਲਾ ਪਤ ਕਵਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਸੋ ਭਰਮੈ ਨਾਹੀ, ਪੱਗ ਲੱਗ ਰਾਮ ਰਹਿ ਸ਼ਰਨਾਹੀ। ਉਹ ਭਰਮਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਟਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬੇਅੰਤ ਵੱਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਪੈਰੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਅੱਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਉਪਮਾ ਤੇਰੀ ਆਖੀ ਜਾਏ। ਆਖਿਆ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਜਾਣੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ, ਮੈਂ ਮਛਲੀ ਕੈਸੇ ਅੰਤਲ ਹਾਂ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਛਲੀ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਤੂੰ ਏਡਾ ਬਿਆਨ। ਅੱਛਾ, ਮੱਛੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅੰਤ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੱਛੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਉਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮਾਨਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣਾ ਤੇਰਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਸ਼ਾਂ ਆਗਾਸ਼, ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲ ਥੱਕੇ ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਇੱਕ ਵਾਤ, ਸਹਿਸ 18 ਕਹਿਣ ਕਿਤੇਬਾਂ। ਕਿਤੇਬਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ, ਇਬਰਾਨੀ ਮਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਹਿਸ 18 ਕਹਿਣ ਕਿਤੇਬਾਂ ਅਸਲੂ ਇੱਕ ਧਾਤ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ, ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼, ਜੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ, ਲੇਖੇ ਲਿਖਦਿਆਂ ਲਿਖਦਿਆਂ ਮੈਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ। ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਂਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ, ਜਿਨੇ ਇੰਨੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਵਨ ਸਵੰਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਕਿਵੇਂ ਪਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਰਾਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰਾਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਆਖਿਆ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰੋ ਜਿਹਨੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ। ਆਖਿਆ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਰਾਮ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਨਹੀਂ, ਰਾਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਆਖਿਆ ਪੌਣ ਉਪਾਏ, ਪੌਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਹਵਾ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹਵਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਧਰੀ ਸਭ ਧਰਤੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ, ਧਰਤੀ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੌਣ ਉਪਾਏ ਧਰੀ ਸਭ ਧਰਤੀ, ਜਲ ਅਗਨੀ ਕਾ ਬੰਧ ਕੀਆ। ਅੱਛਾ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਜਲ ਤੇ ਅੱਗ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਜਲ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਤੱਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੈਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤੱਤਾ ਜਲ ਵੀ ਤੱਤੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਆਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਦਰਤ ਐਸੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੌਣ ਉਪਾਏ ਹਵਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ, ਜਲ ਅਗਨੀ ਕਾ ਬੰਧ ਕੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਲ ਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਹੈ